0: Radio Dinrat 93.6 FM, your ultimate folk station.
1: भागी सी साड़ी सफेद में, ऐसा लगे जैसे ऊपर से सीधे दिल में आई है। आज तो ऊपर वाले पे मानने को जी कर रहा है, इकलौती हो तुम, ना कोई दूसरी बनाई है।